0: ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
1: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ, radiosursangam.ca, ਫੋਨ 403-585-0910, ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ।
2: Hola amigos, los invito a escuchar mi programa radial Soy Latinoamericano los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Les ofrezco noticias, comentarios, hermosa música latina y regalos. Los espero el próximo miércoles para que juntos celebremos nuestras raíces latinoamericanas.
0: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जाँच क्षमताएं प्रदान करेगा, ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश।
3: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

बौद्धिक माहौल में कदम रखते ही नेहा वामपंथी छात्र राजनीति की ओर आकर्षित हुई और जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा है उससे वो जुड़ गई। अपनी बेबाक कार्यशैली, तीखे भाषणों और नेतृत्व क्षमता के बल पर वो जल्दी ही संगठन के शीर्ष पदों पर पहुंचती हैं और फिलहाल प्रेजेंट में आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो उसको संभालती हुई नजर आ रही है। हालांकि साल 2018 से ही विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र आंदोलनों और जो अधिकार हैं उनकी लड़ाइयों में काफी एक्टिव रही थी, हर मूवमेंट में दिखती हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली बड़ी पहचान मिली वो मिली जब अभी नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन हुआ उसमें मिली। शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ जंतर मंतर पर उन्होंने ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। नीट परीक्षा में हुई जो धांधली है उसके खिलाफ जंतर मंतर पर नेहा बोरा ने अपने जो साथी हैं मनीष कुमार और अमितोज उनके साथ 23 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल की। इस ऐतिहासिक धरने में पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांगचुक समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। कई सांसद थे जिन सबने हिस्सा लिया था। आंदोलन काफी बड़ा भी हुआ था। अब इस दौरान कड़े संघर्ष और लंबे उपवास की वजह से यानी फास्टिंग की वजह से नेहा का जो वजन है वो करीब 8 किलोग्राम तक घट गया था, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। मनोबल और हौसला टस से मस नहीं कर पाया कोई उनका। अंततः देश भर के छात्रों और बुद्धिजीवियों के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस विरोध प्रदर्शन ने नेहा बोरा को देश की युवा पीढ़ी यानी कि जो जेंजी है जिनका हम जिक्र करते हैं एक मजबूत और उभरते हुए राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद वो अगस्त महीने में झारखंड प्रतियोगी परीक्षाओं और जेपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ भी झारखंड पहुंची। छात्र आंदोलन में मुखर रूप से शामिल भी हुई। झारखंड विधानसभा के पास प्रदर्शन के दौरान उन पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस वजह से और इस तरह की चीजों से वो कतई डरने वाली नहीं है और ऐसी डराने वाली हरकतें युवाओं के गुस्से को शांत नहीं कर सकती। अब हाल ही के दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और चुनाव प्रक्रिया में जो कथित गड़बड़ियों को लेकर आयसा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ज्ञानेश बस हो गया ब्रो, वो ये कहती हैं। इस तरह के नारे और स्लोगन्स उनके हाथों में आपने देखे होंगे, बैनर्स, पोस्टर्स। जंतर मंतर पर वो बड़ा प्रदर्शन का हिस्सा बन चुकी हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के साथ हुई लुका छुपी और बैरिकेड्स लांघने के दौरान उनके तेवर देखने लायक थे। आरके आश्रम, मेट्रो स्टेशन और तनाट प्लेस से लेकर विजय चौक तक पुलिस को चकमा देते हुए उनके कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए, सनसनी मचा चुके हैं। दी टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में वो हंसते हुए ये कहती हैं, मैं कोई पेशेवर धावक नहीं हूं, लेकिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ने मुझे दौड़ना सिखा दिया है, ऐसा बना डाला है, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। पुलिस हिरासत में ली गई बसों के अंदर से भी उनके वीडियो ये साबित करते हैं कि ये प्रशासनिक दबाव के आगे झुकने वाली फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। फौजी पिता से मिला अनुशासन, स्ट्रीट थिएटर से मिली अभिव्यक्ति की ताकत और JNU की वैचारिक पाठशाला से तराशी गई राजनीतिक धार, इन तीनों का अनूठा संगम नेहा बोरा के व्यक्तित्व को बेहद खास बना रहा है। आने वाले समय में उनका ये सफर भारतीय छात्र राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वो जेंजी के विद्रोही तेवर और जुझारूपन की एक जीवंत मिसाल बन चुकी है।

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte weekante suno. Monday to Friday. Sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9. Jitendra Pannu. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
2: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा वासी एकजुट हो जाते हैं और आगामी जनमत संग्रह बहुत मायने रखता है। ये अल्बर्टा वासियों को अपने प्रांत पर अधिक अधिकार दे सकता है। हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ओटावा के बजाय अल्बर्टा द्वारा की जाए और हमें अपनी ऊर्जा आप्रवासन और सामाजिक सेवाओं पर अधिक अधिकार मिले। 19 अक्टूबर को एकजुट कैनेडा के भीतर एक मजबूत और स्वायत्त अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वेबसाइट पर जाएं alberta referendum2026.ca। इस विज्ञापन का भुगतान अल्बर्टा सरकार द्वारा किया गया है।
3: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Subarang Radio 94.7 FM.
4: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m.
3: Visit subarang.ca.
1: Punjab to prasidh patrakar Jitendra Pannu ji nu somvar to shukrawar Radio Sursangam 94.7 FM te suno. Hafte de 20 ghante Radio Sursangam. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
5: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए 8 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के खानदानों कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी खुफिया मालूमात डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती सलाह फराहम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
2: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
3: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
4: मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 टू 8 PM संडेज 1 टू 5 PM
3: विजिट सबरंग.ca
5: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ?
1: जी हाँ, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम कर दे जग्गी टिलो नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी टिलो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 28वीं सालाना सिख नेशन खूनदान मुहिम दा समा आ गया है। नवंबर 1984 विच होए सिख कतलेआम दी याद दे विच ए मुहिम हर साल नवंबर महीने दे विच चलाई जांदी है। आओ 1984 दी सिख नसलकुशी दे मजलूमा दी याद दे विच एक एक बूंद नाल किसे दी जिंदगी रोशन करिए। सिख नेशन दा ए उपराला मानवता दी सेवा, चढ़दी कला, सरबत दे भले ते निष्काम सेवा दा प्रतीक है। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वास्ते कैलगरी वासियां कोल इस वारी 3 बार खूनदान करन दा मौका है। 7 नवंबर, 14 नवंबर अते 21 नवंबर नू ग्रैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी दे विच खूनदान करन लई बुकिंग करवाओ। बुकिंग करवाउण लई जां वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकदे हो बिल कालों जी नू 403-617-9045 ते, जां फिर कॉल कर लो तरसेम प्रहार होरां नू 403-701-1308 ते।